0: सीरियस गाना है, शांत हो जाओ जरा।
1: कोई भोली भाली उम्र च कुटिया ना खेडे, कोई उसे ही उम्र विच कटा हथ